ऑप्टिकल जकोजी एंड विलियम्स पार्क रिवेम्बर जो गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5555 कॉल कीजिए 9054567333। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

0: of Nantes, a product of samosa and sweet factory at all leading grocery stores.
1: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए जीटीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 905-458-6808
2: पातशाही जसे कभी बात बेनती चौपाई

श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देव

0: दृष्टं मधुरं तीष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपामधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
1: मण्डलं रामचन्द्रम् इति यानं च रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पूसामापातकनाशनम् छात्रालिलोत्पल श्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम् साधिधूनधनुर्बाणं पाणिं नर्तं च रान्तकं स्वलीला जगद्रासु माविर्भूतमजविभुं राम रक्षापटे प्राज्ञा पापं सर्वकामनं शिरोमेधाङ्गौ पातु बालं दशतात्मजा कौसल्ययोः दृशः पातु विश्वमित्रप्रियस्मृतिग्राहणं पातु मुखकाता मुखं सौमित्रवत्सला जिह्वा विद्यानिधि पातु कण्ठं पर्तं तत्कन्दुदीदायुध पातु भुजमग्नेशकारमुख करु सीतापति पातु हृदये जां दग्नयुत्मध्यं पातु करध्वंसीनाम्बिजाम्बुदश्रयः सुग्रीवेशकटि पातु शक्तिनि हन्मत्प्रभु उर्ध्वगतम पातु रक्षकुल्लाशकृत जाननिषेधकृत् पातु जङ्घिदुशमुखार्थकः भीषण श्रीद पातु राम खल पिता राम बल पिता रक्षा सुखपटे सचिरायु सुखी पुत्री विजय विनय भर पाता चारिण छन्न चारिण दृष्टम शब्द सरक्षित राम नाम विरामे राम भद्रे रामचंद्रे वास्तर नरण लिपते पातर मुक्ति मुक्ति चंद्र जय जेत्र मंत्र राम नाम सुरक्षित यह कंड धार इस कर सहसर सिद्ध वज्र पंचर राम दम राम कचत पर तव तान सर्वत्र अस्ति जय मंगल आदिष्ट वन राम रक्षण मोहन तथा लिपितम प्रातः प्रबुद्ध बुद्धि कौशिक आराम कल्प रक्षण राम सकल पद अभिराम श्री लोकाना राम श्रीमंत प्रभु तरुण रूप संपन्न सुकुमार महाबल पुंडरिक विशालाक्ष चिर कृष्णा श्री राम पद फल मूल श्री लदांत तापस ब्रह्मचारिण पुत्र दशरथ सहित भ्रातर राम लक्ष्मण शरण सर सत्वान श्रेष्ठ सर्वधर्षदा रक्षी कुल हंदार उताय तानुर वित्तम आत्म सजित शाविस्पृशाह वक्षा शिविनिशम संगिनो रक्षणाम राम लक्ष्मण वग्र तापस सजगिष्टाम स्कंद को चिखवी ताप बाणधर युवा गच्छन वन रस्माकम राम पातु सुलक्ष्मण राम दशर तीशुर लक्ष्मण चरवरी काकुत सपुर शपुर कौशल निरो वित्तम वेदांत वेद अग्निश प्राण पुरुषोत्तम जाष्टवल भंग श्रीमान सर्वत्र अक्रमितेंज पन्नित्य राजेन्द्रम सत्यसन्दम दशरथनम श्यामनम ख्यातम उद्योगम राघम रावणार्यम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतापति नम श्री राम राम राम नंदन राम राम श्री राम राम राम राम श्री राम राम कर्कश राम राम श्री राम राम शरणम गो राम राम श्री रामचंद्र चरण मंत्रात्मे श्री रामचंद्र चरण वत्सामे श्री चरण शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरण शरण प्रपद्ये माता रामो मतिता रामचंद्र स्वामी राम रामचंद्र सर्वस्वामे रामचंद्र जान नान जाने व जाने न जाने दक्षिण लक्ष्मण ये स्वामी दुजन कात्म जापो उत्तमार तेरी से सौंदरम नंदन मंदिर लोकाम राम रणरंग धीर राजे नेतर मृगवर्ष आसन कारण निरुक्त नकरंद श्री रामचंद्र शरण प्रपद्ये वंजामा तुल्य वेगम नितेंद्र मृत्युवताम वरिष्ठम ध्वजमान युद्ध मुख्यम श्री राम तम शरण प्रपद्य कुजंत राम राम मधुर मधुरासन आधुनिक कशाक वंदे वाल्मीकि कोकिल आपद प्रतारम दातारम तर तम नाम मंदिर लोकाभिनम विनमामिनम वर्जनम विजय नामजम संपदम तर्जम्यम दूतान राम रामेति गर्जम रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामायणाभिनीतानि सचर्चम रामाय तस्मिन्नम रामायणासि प्रायणम परतरम रामस्य दातु सस्मिहम रामे चित्तले सदा भवस्मि भू रामामुदर राम रामेति रामेति रम राम मनोरम सौत्र राम तत्तुल्यम राम नम रणने इति श्री बुद्धि कौशिक विरचितम श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु।

सप्तश्लोकी तुला शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी करौमि कार्य सिद्ध्यर्थम्।

सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, या अली मदद। और आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार, घर संसार, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो हमारा आपका हर वीकेंड में हम आपकी सेवा में हाजिर होते हैं, सैटरडे संडे को, और शाम जो सैटरडे की शाम जो सभी के लिए बहुत ही सुहावनी होती है, स्पेशली गर्मियों के दिनों में, आजकल के सावन के महीने में। तो आजकल सावन का महीना चल रहा है और सोमवार जो है, दो सोमवार जो लोग व्रत रखते हैं सावन के महीने के सोमवारों का, तो ये जो है आपके लिए सावन का महीना है। तो जो लोग व्रत रख रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, शंकर भगवान को की पूजा का पूरा महीना है। तो और झूले पड़ते हैं इंडिया में तो बहुत ही बढ़िया, पूरे बनाए जाते हैं गुड़ के, आप जानते हो पूरे क्या होते हैं। तो खूब फेस्टिव सा, यहाँ भी अभी तो लोग पिकनिक्स करते हैं, सभी लोग पूरे बनाते हैं जिस दिन बारिश होती है, तो इस तरह से अपना मनोरंजन वो बनाए रखते हैं किसी ना किसी तरीके से, दोस्तों मित्रों के साथ वीकेंड में खास करके। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, और साथ में आपने बहुत बढ़िया किस्म की आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर के साथ बढ़िया टीवी चाहिए, और आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, किचन के गैजेट्स लेटेस्ट चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। अपनी सिस्टर को बढ़िया सी गिफ्ट लेके देनी है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी राखी स्पेशल देखें, और फिर आपको ऑर्डर बुक करना है तो 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने मूव होना है तो आप HK मूवर्स का कॉल कीजिए, वो कैनेडा भर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं, 416-524-804 आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो एक बार फिर से नंबर ले लीजिए, 416-524-6704, HK मूवर्स। अब अगर लंदन आसपास के इलाके में आप रहते हो, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कलिजन डिपो गोर रोड पे लंदन में मौजूद है। आपको किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइए और आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं, बहुत सालों का उनका तजर्बा है। तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिएगा। तो अब आपने अगर लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ लेनी है आपको राखी के लिए, तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइए। आप किचन और बाटल वॉक में रहते हैं, घर खरीदना बेचना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है, तो नसीब खंड को कॉल कीजिए, 519-546-1260, 519-546-1260 पे आप नसीब खंड को कॉल कर सकते हैं। आपको लाइव कुकिंग करवानी है, डिनर लंच करना है, तो न्यूली रेनोवेटेड न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट, राखी के लिए आपको मिठाइयाँ लेनी है तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट व्यू ब्रिटानिया भी मौजूद है, और जानकारी के लिए आप 905-814-1703 पर कॉल कीजिए, 905-814-1730 पे कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको 80s की दौर में ले चलते हैं, तो डिंपल कपाड़िया, ऋषि कपूर, आइए ये गीत, तो रोमांटिक सा गीत।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है जल संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अगर आपकी कोई खास पिकनिक होने वाली है या कोई और प्रोग्राम होने वाला है तो आप जरूर हमें बता सकते हो और ईमेल कर सकते हो gharsansar@gmail.com, तो हम यहाँ पे अनाउंस कर देंगे। आपका कोई भी कम्युनिटी प्रोग्राम हो तो जरूर बताइएगा, हम जरूर शेयर करेंगे अपने लिसनर्स के साथ। जो लिसनर्स हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगस्त में ही हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था और अगस्त 25-30 साल हो गए हैं प्रोग्राम को चलते हुए। आपकी दया से, कृपा से, स्पॉन्सर्स की दया से, कृपा से, कोऑपरेशन से, तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, टीवी अपनी बहन को लेके देना चाहते हो राखी के लिए, या और कोई गैजेट किचन की बढ़िया बढ़िया, आजकल तो बढ़िया एडवांस गैजेट्स आ गए हैं, रोटी मेकर ये वो, तो आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए या किसी तरह का भी आपको बारबेक्यू चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए और फिर आप अपने ऑर्डर बुक कर लीजिए 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने मूव होना है तो एच के मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं, तो सारे कनाडा भर में मूव होने के लिए उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-404 416-524-6704 पे आप कॉल कर सकते हो एच के मूवर्स को। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी, आपको टोरंटो के आसपास के इलाके में आपको प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी, आप खुशवंत सिंह बैंस को कॉल कीजिए 416-670-1313 पे आप कॉल कर सकते हो। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो आइए अब आपको ये भी बड़ा
1: रोमांचक,

तो ये जो गाना था बड़ा जैसे बड़ा मीनिंगफुल है, ये आपके लिए उस्ताद रशीद खान की तरफ से पेश किया गया, करीना कपूर शाहिद कपूर जब वी मेट मूवी, उसी का ये गाना है। तो बड़ा ही रोमांटिक भी है और साथ में बड़ा मीनिंगफुल भी है। तो मूवी ये जो थी जब वी मेट, रियली नाइस मूवी, आपको अगर मौका मिले जरूर देखना। सजेस्ट कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मेरी पसंद आपकी की पसंद आपकी भी पसंद हो, लेकिन कई बार बड़ा एंटरटेनिंग चीज़ होती है। अब अगर आप किसी किस्म की भी आपको आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, जितना वाटर में, तो आप नसीब ठंड को कॉल कीजिए 519-546-1260 पे कॉल कर सकते हो। तो आइए अब आपको एक और बढ़िया सा प्यारा सा रोमांटिक सा गीत सुनाती हूँ। तो राजेश खन्ना, आर डी वर्मा, किशोर कुमार।

0: सभी का एक बार फिर से घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार। और अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो एचक्यू मूवर को कॉल कीजिए 416-524-804 416-524-6704। और आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेना है बढ़िया क्वालिटी का बढ़िया प्राइस, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्थ में है। और टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप अपनी पसंद कीजिए और फिर अपना ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल करिए 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हो। अगर आप लंदन में रहते हो, आपके लिए बड़ी खुशी वाली खबर है कि अब आपके लिए जो मास्टर कोलिजन डिपो वाले हैं वहाँ पे खुल चुके हैं। आपने किसी किस्म की भी कोलिजन का काम करवाना है, आपकी कार वैन ट्रक नए जैसा बना देते हैं, तो गोर रोड पे मौजूद है लंदन में, तो आप मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। तो आइए आपको एक और बढ़िया प्यारा सा गीत सुनाते हैं। इसमें जो है कि एक सिंगर जो है एक वो लवर जो है वो थोड़ा प्रेडिकमेंट में है, सुनिए किस तरह की प्रेडिकमेंट है।
1: या चुप रहो
0: नीतू कपूर और शशि कपूर,
1: चाहे

आपका स्वागत है घर संसार में। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अगर आप इस प्रोग्राम के जरिए अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हो 6477737640। अगर आपके यहाँ शादी है, आपको बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी चाहिए, वॉचेस चाहिए गिफ्ट देने के लिए, तो आप कॉल कर लेना 6477737640। और जहाँ फिर आपने शादी में लोगों को गिफ्ट देना है तो उसमें भी उसके लिए भी आपके बढ़िया बढ़िया आप गिफ्ट दे सकते हो बड़े रीजनेबल प्राइसेस में। आप कॉल कर सकते हो आप 6477737640। मैं बताना चाहती हूँ कि एक ज़माना था कि पहले पहले लोग ना लड़कियों को ज़्यादा, जैसे कि यहाँ कनाडा में आने के बाद भी लोगों को ये था कि लड़कियाँ ज़्यादा उनको नहीं होना चाहिए ये जो मीडिया के दुनिया में। तो बहुत जैसे जो लड़कियाँ रेडियो प्रोग्राम करती थी 70s में, 80s में, 90s में, बहुत कम लड़कियाँ थी। आजकल तो मीडिया के उनकी एजुकेशन हो गई है तो बहुत सारी लड़कियाँ आगे आ गई हैं और बहुत ही बढ़िया बात है, और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम दे रही हैं, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट करती हैं, बहुत कमाल के रेडियो प्रोग्राम करती हैं। मैं उनके प्रोग्राम सुनती हूँ तो उनको सराहती हूँ कि बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि औरतें आगे आ रही हैं, बढ़ रही हैं आगे, तो ये भी एक बड़ी खुशी वाली बात है। तो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती थी एक पॉजिटिव नोट। तो आइए आपको ये प्यारा सा गीत सुनाती हूँ। सारे खंड का जुड़ गए।

बढ़िया। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। हैव ए वंडरफुल वीक एंड सेफ वन। प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड एंजॉय योर टाइम। व्हाट एवर यू डू मस्ट डू सम एक्सरसाइज। गिव योरसेल्फ सम टाइम। अपने आप को थोड़ा समय देना चाहिए अपनी देखभाल करने के लिए। प्रोग्राम बनाना चाहिए, अपने खाने का प्रोग्राम बनाना चाहिए। अगर आप अपनी देखभाल करोगे तो आपके आसपास वाले भी, दुनिया वाले भी आपकी जरूर देखभाल करेंगे। सो इसी नोट के साथ नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने स्वास्थ्य कला।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: Williams Park में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, आपकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-7333 पर कॉल कीजिए। 905-456-7733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: कर रहे हैं।

0: Nine days of broader top samosa and sweet factory at all leading grocery stores.
1: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए जीटीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 905-458-6808

श्री आदित्य कवच स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता गृणीये बीजं सूर्यगुं शक्तिः।

ओम नमः ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम

कायै वशुत अम्राइं कवचायहं अम्राम नेत्रत्रयाय वशुत अम्राह अस्त्राय भट पदध्यानं वामे करे वैरवहं महंतं शैलं परिश्रीं करमालयाख्यं दधानमाख्यामाद सुवर्णभरणं पदीचुरत्कुण्डलमाञ्जनीयम् नमो भगवते विचित्र वीर हरमते प्रलय कारान प्रभात सुरत्ता भवत देहाय अंजनी गर्भ संभूताय प्रकट विक्रम वीर दैत्य दानव यक्ष राक्षस ग्रह बंधनाय भूत ग्रह प्रेत ग्रह पिशाच ग्रह शाकिनी ग्रह दाकिनी ग्रह काकिनी ग्रह कामिनी ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह चोर ग्रह बंधनाय एहि एहि आगच्छागच्छ आवेशयावेशय मम हृदयं प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यं कथय कथय व्याघ्रं खं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय राजमुखं बन्धय बन्धय सभामुखं बन्धय बन्धय शत्रुमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय लंका प्रसाद भञ्जना सर्वजनं मे वशमानय वशमानय श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वानाकर्षय आकर्षय शत्रून्मापय मापय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे खे श्रीरामचन्द्राज्ञया प्रज्ञया मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून्भस्मि कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रैं ह्रों ह्रः फट् श्री विचित्र वीर हनुमते मम सर्व शत्रून् भस्मी कुरु कुरु हर हर हूं फट् स्वाहा एकादश शतवारं कृत्वा सर्व शत्रून् वशमानयति नान्यथा इति श्री विचित्र वीर हनुमान।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, या अली मदद। और आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार, घर संसार, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो हमारा आपका हर वीकेंड में हम आपकी सेवा में हाजिर होते हैं, सैटरडे संडे को, और शाम जो सैटरडे की शाम जो सभी के लिए बहुत ही सुहावनी होती है, स्पेशली गर्मियों के दिनों में, आजकल के सावन के महीने में। तो आजकल सावन का महीना चल रहा है और सोमवार जो है, दो सोमवार जो लोग व्रत रखते हैं सावन के महीने के सोमवारों का, तो ये जो है आपके लिए सावन का महीना है। तो जो लोग व्रत रख रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, शंकर भगवान को की पूजा का पूरा महीना है। तो और झूले पड़ते हैं इंडिया में तो बहुत ही बढ़िया, पूरे बनाए जाते हैं गुड़ के, आप जानते हो पूरे क्या होते हैं। तो खूब फेस्टिव सा, यहाँ भी अभी तो लोग पिकनिक्स करते हैं, सभी लोग पूरे बनाते हैं जिस दिन बारिश होती है, तो इस तरह से अपना मनोरंजन वो बनाए रखते हैं किसी ना किसी तरीके से, दोस्तों मित्रों के साथ वीकेंड में खास करके। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, और साथ में आपने बहुत बढ़िया किस्म की आपको फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर के साथ बढ़िया टीवी चाहिए, और आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, किचन के गैजेट्स लेटेस्ट चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। अपनी सिस्टर को बढ़िया सी गिफ्ट लेके देनी है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्थ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी राखी स्पेशल देखिए, और फिर आपको ऑर्डर बुक करना है तो 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने मूव होना है तो आप HK मूवर्स का कॉल कीजिए, वो कनाडा भर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं, 416-524-804 आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो एक बार फिर से नंबर ले लीजिए, 416-524-6704, HK मूवर्स। अब अगर लंदन आसपास के इलाके में आप रहते हो, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो गोर रोड पे लंदन में मौजूद है। आपको किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइए और आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नया जैसा बना देते हैं, बहुत सालों का उनका तजर्बा है। तो मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिएगा। तो अब आपने अगर लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ लेनी है आपको राखी के लिए, तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइए। आप किचन और बाटल लुगवाक में रहते हैं, घर खरीदना बेचना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है, तो रिसीव फ्रेंड को कॉल कीजिए, 519-546-1260 पे आप रिसीव फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं। आपको लाइव कुकिंग करवानी है, डिनर लंच करना है, तो न्यूली रेनोवेटेड न्यू इंडिया स्वीट रेस्टोरेंट, राखी के लिए आपको मिठाइयाँ लेनी है तो न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट व्यू ब्रिटानिया भी मौजूद है, और जानकारी के लिए आप 905-814-1700 पर कॉल कीजिए, 905-814-1730 पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए आपको 80s की दौर में ले चलती हैं, तो डिंपल कपाड़िया, ऋषि कपूर, आइए ये गीत, तो रोमांटिक सा गीत।

मैं एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अगर आपकी कोई खास पिकनिक होने वाली है या कोई और प्रोग्राम होने वाला है तो आप जरूर हमें बता सकते हो और ईमेल कर सकते हो gharsansarradio@gmail.com, तो हम यहाँ पे अनाउंस कर देंगे। आपका कोई भी कम्युनिटी प्रोग्राम हो तो जरूर बताइएगा, हमारा हम जरूर शेयर करेंगे अपने लिसनर्स के साथ। जो लिसनर्स हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगस्त में ही हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था और अगस्त 25-30 साल हो गए हैं प्रोग्राम को चलते हुए। आपकी दया से, कृपा से, स्पॉन्सर्स की दया से, कृपा से, कोऑपरेशन से, तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, टीवी अपनी बहन को लेके देना चाहते हो राखी के लिए, या और कोई गैजेट किचन की बढ़िया बढ़िया, आजकल तो बढ़िया एडवांस गैजेट्स आ गए हैं, रोटी मेकर ये वो, तो आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए या किसी तरह का भी आपको बारबेक्यू चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए और फिर आप अपने ऑर्डर बुक कर लीजिए 905-799-0045 पे कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने मूव होना है तो एच के मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं, तो सारे कनाडा भर में मूव होने के लिए उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-404 416-524-6704 पे आप कॉल कर सकते हो एच के मूवर्स को। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी, आपको टोरंटो के आसपास के इलाके में आपको प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है, आप खुशवंत सिंह बैस को कॉल कीजिए 416-677-1313 416-677-1313 पे आप कॉल कर सकते हो। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार, तो आइए अब आपको ये भी बड़ा रोमांचक।

ये जो गाना था बड़ा जैसे बड़ा मीनिंगफुल है, ये आपके लिए उस्ताद रशीद खान की तरफ से पेश किया गया, करीना कपूर शाहिद कपूर जब वी मेट मूवी, उसी का ये गाना है। तो बड़ा ही रोमांटिक भी है और साथ में बड़ा मीनिंगफुल भी है। तो मूवी ये जो थी जब वी मेट, रियली नाइस मूवी, आपको अगर मौका मिले जरूर देखना, सजेस्ट कर सकती हूँ। जरूरी नहीं कि मेरी पसंद आपकी की पसंद आपकी भी पसंद हो, लेकिन कई बार बड़ा एंटरटेनिंग चीज़ होती है। अब अगर आप किसी किस्म की भी आपको आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, कितना वाटर में, तो आप नसीब ठंड को कॉल कीजिए 519-546-1260 पे कॉल कर सकते हो। तो आइए अब आपको एक और बढ़िया सा प्यारा सा रोमांटिक सा गीत सुनाती हूँ। तो राजेश खन्ना, आर डी वर्मा, किशोर कुमार।

0: Traveling
1: 100 countries, I have learned how to avoid some serious headaches. After a
0: सभी का एक बार फिर से घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार। और अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो एक मूवर को कॉल कीजिए 416-524-8004 416-524-6704। और आपको फ्रिज स्टोव वॉशर ड्रायर लेना है बढ़िया क्वालिटी का बढ़िया प्राइस, तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। और टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप अपनी पसंद कीजिए और फिर अपना ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल करिए 905-749-0045-905-799-0045 पे कॉल कर सकते हो। अगर आप लंदन में रहते हो, आपके लिए बड़ी खुशी वाली खबर है कि अब आपके लिए जो मास्टर कोलिजन डिपो वाले हैं वहाँ पर खुल चुके हैं। आपने किसी किस्म की भी आपको आपने किसी किस्म की भी कोलिजन का काम करवाना है, आपकी कार वैन ट्रक नए जैसा बना देते हैं, तो गोर रोड पे मौजूद है लंदन में, तो आप मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। तो आइए आपको एक और बढ़िया प्यारा सा गीत सुनाते हैं। इसमें जो है कि एक सिंगर जो है एक वो लवर जो है वो थोड़ा प्रेडिकमेंट में है। सुनिए किस तरह की प्रेडिकमेंट है।
2: या चुप रहो
0: नीतू कपूर और शशि कपूर
2: क्या है।

स्वागत है घर संसार में। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अगर आप इस प्रोग्राम के जरिए अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हो 6477737640। अगर आपके यहाँ शादी है, आपको बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी चाहिए, वॉचेस चाहिए गिफ्ट देने के लिए, तो आप कॉल कर लेना 6477737640। और जब फिर आपने शादी में लोगों को गिफ्ट देना है तो उसमें भी उसके लिए भी आपके बढ़िया बढ़िया आप गिफ्ट दे सकते हो बड़े रीजनेबल प्राइसेस में। आप कॉल कर सकते हो आप 6477737640। मैं बताना चाहती हूँ कि एक ज़माना था कि पहले पहले लोग ना लड़कियों को ज़्यादा, जैसे कि यहाँ कनाडा में आने के बाद भी लोगों को ये था कि लड़कियाँ ज़्यादा उनको नहीं होना चाहिए ये जो मीडिया के दुनिया में। तो बहुत जैसे जो लड़कियाँ रेडियो प्रोग्राम करती थी 70s में 80s में 90s में, बहुत कम लड़कियाँ थी। आजकल तो मीडिया के उनकी एजुकेशन हो गई है तो बहुत सारी लड़कियाँ आगे आ गई हैं और बहुत ही बढ़िया बात है, और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम दे रही हैं, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट करती हैं, बहुत कमाल के रेडियो प्रोग्राम करती हैं। मैं उनके प्रोग्राम सुनती हूँ तो उनको सराहती हूँ कि बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि औरतें आगे आ रही हैं, बढ़ रही हैं आगे, तो ये भी एक बड़ी खुशी वाली बात है। तो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती थी एक पॉजिटिव नोट। तो आइए आपको ये प्यारा सा गीत सुनाती हूँ। सारे खंड का जुड़ गए।

या तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। हैव अ वंडरफुल वीक एंड अ सेफ वन। प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड एंजॉय योर टाइम। व्हाट एवर यू डू मस्ट डू सम एक्सरसाइज। गिव योरसेल्फ सम टाइम। अपने आप को थोड़ा समय देना चाहिए अपनी देखभाल करने के लिए। प्रोग्राम बनाना चाहिए, अपने खाने का प्रोग्राम बनाना चाहिए। अगर आप अपनी देखभाल करोगे तो आपके आसपास वाले भी, दुनिया वाले भी आपकी जरूर देखभाल करेंगे। सो इसी नोट के साथ नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने स्वार्थ कला।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: गार्निशमेंट, पावर ऑफ सेल नोटिस, बैंक वालों पैसे दी मांग, उन्हें ही सानू कॉल करो, फिर तो अनु कोई नहीं कर सकेगा तंग। कर्जा माफ कराओ, 100% मानसिक शांति पाओ, कलेक्शन कॉलों तो छुटकारा, बिना व्याज निकिया निकिया किश्तां। कॉल करो कनाडा कंज्यूमर क्रेडिट असिस्टेंस 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे कम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए, देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862, 647-400-6862, G Media Group।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप। If you want to know about Supervisa Insurance and their best rates, best plan and best options for your parents and grandparents on 40-45% discount, so contact today 647-400-6862. Harjinder Kulp.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.

0: बिल्कुल जी, यही है। इसलिए बहुत लोग की आराम नाल देखो, आप रीफाइनेंसिंग कराओगे, इक्विटी है नहीं घर में आपके, नकली कागज बनाओगे, कमीशन दोगे, दो नंबर में अंडर द टेबल ओवर द टेबल पैसे दोगे, फिर बाद में डरोगे कि भैया पकड़े ना जाए। साफ काम करो, साफ तरीके से करो, एक पंथ दो काज, सारे असली कागज लगते हैं, फैमिली साइज ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, लोन ज्यादा आता है आपके खाते में।
1: नंबर बोल दो,
0: इसके अंदर नंबर हमारा फीस काम होने के बाद 199 नंबर 437-264-31-75 437-264-31-75 प्रॉपर ऑफिस है जी, 1000 square feet का, 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे, 7 बंदे आपके लिए काम कर रहे हैं, 8 साल में बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं। 437-264-31-75 हुने कॉल करो, एस्टीमेट लो, 437-264-31-75।
1: लो दोस्तों कॉल करके, कॉल देते इन्होंने दस देना कि तुसी एलिजिबल हो, किन्ने पैसे लिए एलिजिबल हो, बाकी तुहाडे मन च होर कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट कॉल कर लो 437-264-31-75 437-264-31-75। बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। सो आओ तुहानू लैके चलीए ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंस ते। सुल्तान जी सत श्री अकाल जी, आई नू वेलकम, एक बार फिर दिओ सुनेहा क्योंकि 7 बजे तक तुहाडा स्टोर ओपन आ, 3 घंटे रह गए ने। जो जो अज आ रहा अपलायंस लई टीवी लई की फायदा हो रहा जी?
0: बिल्कुल भला साहब, ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस ते इस वक्त भी जी 3 to 4 फैमिलीज शॉपिंग कर रही हैं। जदों असीं फैमिली दी गल करदे हां ते उहदे च 3 to 4 परसन दी फैमिली हुंदी है। सो इस टाइम टीवी सैक्शन दे विच जिहड़े भी असीं स्पैशल प्राइसिस दे रहे हां, उहदे च 85 inch सोनी ब्रेविया मॉडल लैणा है ते सोनी ब्रेविया 3 मिलेगा लेटेस्ट अपडेटेड, जिहड़ा कि $2200 तों $1599 दा। जे 98 inch लेना है सैमसंग मिलेगा $3500 तो $1999 का। जे 50 inch ले गए तो 50 inch $299 का, 55 inch $399 का, 65 inch $599 का, 75 inch $699 का। ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस से आज शाम 7 बजे तक अवेलेबल है। पेमेंट 6 महीने की करनी है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी है जी। 905-450-2828 नंबर है। brampton appliances.com साडी वैबसाइट है जिथे तुहानू बंडल पैकेजेस भी मिलणगे ते बंडल पैकेज दे उपर तुसी $2000 सेव कर सकदे हो, क्योंकि फ्रिज स्टोव डिशवाशर 3-piece किचन बंडल $5000 वाला $2999 च असी दे रहे हैं ते $2999 भी 6 महीने च पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 905-450-2828 नंबर है। अपराइज स्टैंडिंग फ्रीजर तुहानू चाहिदा $1400 वाला स्टैंडिंग फ्रीजर तुहानू अज दे रहे हैं $799 च। तुहानू कल्ली वॉशर चाहिदी है $599 दी, कल्ला ड्रायर लेना है $499 दा। ते जिहड़े कस्टमर वॉशर एंड ड्रायर लेना चाहुंदे उन्हां नू फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार $2500 वाला सिर्फ $1799 दा। वॉशर भी स्टीम ते ड्रायर भी स्टीम फीचर दे नाल है। कुछ भी बाय करोगे 6 महीने च पे करना है, फ्री होम डिलीवरी है जी। पहुंचना है तुसी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है। 905-450-2828 नंबर है। brampton appliances.com साडी वेबसाइट है, ब्रैम्पटन टीवी ऐप साडा टिकटॉक अकाउंट है जी। 905-450-2828 905-450-2828 जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तान जी, थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।
1: 7 बजे तक तुसी इत्थे पहुंच सकदे हो जी। ते द मैपल क्लीनिंग दा नंबर जरूर नोट कर लो, जे तुसी रेगुलर क्लीनिंग लई, डीप क्लीनिंग लई, पोस्ट रेनोवेशन क्लीनिंग करवाने आ, चाहे विन वॉश कराने, चाहे तुसी रेजिडेंशियल कमर्शियल किसी भी तरह की क्लीनिंग, जंक रूम कराने, साइडवॉक प्रैशर वॉश ना क्लीन कराने ने, जब विंडो सॉफ्ट वॉश कराने ने, तो नंबर है जी द मैपल क्लीनिंग का 647-286-0077 647-286-0077 647-286-0077 647-286-0077 दिओ जात, फिर मिलदी मीना, सारे नूं प्यार भरी सत श्री अकाल।

0: Asian community in and around the GTA. For exciting packages, promotional offers, and inquiries, please call 416-677-0609. That's 416-677-0609. Culture of Punjab.
1: हर एक जज्बात को दुआ नहीं मिलती, हर एक आरज़ू को जुबान नहीं मिलती। मुस्कान सजाए रखो तो दुनिया है साथ, क्योंकि आजकल हालात ये हैं कि आंसू तक को आंखों में पनाह नहीं मिलती। नमस्कार, आदाब सामीन। बहुत से जज्बातों, एहसासों को शब्दों में छिपा आपके रूबरू हूँ मैं प्रीत, आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस शो को सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे।

0: ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ।
1: साड़ी वक्री पहचान,
2: साड़ा वक्रा है नाम, साड़ी कर नहीं सकता कोई रीज।
1: रेडियो शो जिसको

ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ। कल्चर ऑफ पंजाब आपको एंटरटेन भी करता है और आपको बिजनेस भी देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करे तो इस एंटरटेनमेंट सेगमेंट का हिस्सा बन जाइए। देव तातला को 416-677-0609 that's 416-677-0609 पर कॉल करें और स्पेशल प्रमोशंस का फायदा उठाइए। भाई हम तो यही चाहेंगे कि हमारे आने वाले शोज में आपका बिजनेस भी शामिल हो। कल्चर ऑफ पंजाब बाय देव तातला।

खुद से मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं तो ख्यालों में बहुत दूर निकल जाते हैं। गर वफाओं में सदाकत भी हो और शिद्दत भी, फिर तो एहसास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। उसकी आंखों के नशे में हम जब से डूबे, लड़खड़ाते हैं कदम और संभल जाते हैं। बेवफाई का मुझे जब भी ख्याल आता है, अश्क रुखसार पे आंखों से फिसल जाते हैं। प्यार में एक ही मौसम है बहारों का, पर कभी कभार यूं ही ख्याल आता है कि लोग मौसम की तरह कैसे बदल जाते हैं।

सुन रहे हैं कल्चर ऑफ पंजाब। एक्साइटिंग एडवर्टाइजिंग पैकेजेस के लिए कॉल कर सकते हैं 416-677-0609, 416-677-0609।

कई बार सदियां बीत जाती हैं उनको मिले उनको देखे हुए और मन यूं ही उदास खुद से पूछता है सोचता है कि मैंने देखा था उन दिनों में उसे जब वो खिलते गुलाब जैसा था, उसकी पलकों से नींद छनती थी, उसका लहजा शराब जैसा था, उसकी जुल्फों से भीगती थी घटा, उसका रुख महताब जैसा था, लोग पढ़ते थे रुक रुक कर उसे, वो अदब की किताब जैसा था, सारी आंखें थी आईने उसके, वो हकीकत था या किताब जैसा था। ये मगर देर की कहानी है, ये मगर देर का फसाना है, अब तो उसके और मेरे मिलाप के बीच सदियों भरा जमाना है। दिल बार बार खुद से पूछता है कि ना जाने इन दिनों वो कैसा होगा, क्योंकि मैंने देखा था सदियों पहले से।

0: रब जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं पड़ती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, देव तात्रे नू कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला, भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

जिन राहों से आप अक्सर गुजरते हैं वो रास्ते भी आपके इतने आदि हो जाते हैं कि अगर आप कुछ दिन वहाँ नहीं जाते तो वो भी उदास हो जाते हैं। फिर हैरान परेशान हुए पूछते हैं औरों से कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। समंदर पूछता है कि अब वो दोनों क्यों नहीं आते। वही दोनों जो भीगी रेत पर एक दूसरे का हाथ थामे दूर तक, कभी हंसते कभी कुछ गुनगुनाते या कभी चुपचाप बैठे दूर उफाक की गूंज में रोपोश होने वाले सूरज को देखते, आंसू बहाते और लौट जाते। समंदर पूछता है कि वो दोनों क्यों नहीं आते, पर समंदर बेखबर अनजान है एक सच्चाई से, और वो क्या है आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इस ट्रैक के बाद। व्हिच यू लिसन इन योर वेरी ओन शो कल्चर ऑफ पंजाब ब्रॉट टू यू बाय देवदातला।

0: आप ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: मेरे नबजी, मेरा बिजनेस नीचे चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं पड़ती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $50 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
2: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, देव तातले नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला, भाई स्पेशल पैकेज ने उन्हां कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

0: ख्यालों की दुनिया में आप हैं प्रीत के साथ।
1: You're listening to Culture of Punjab. For exciting advertising packages, call 416-677-0609. 416-677-0609.

0: 32, 55, 80, 98
1: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
2: ओ, काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते,
2: 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी, कॉल 905-450-2828, 905-450-2828।

0: रब जी मेरा बिजनेस नहीं चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं पड़ती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, देवता अतले नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला। भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609, 416-677-0609।

और इसी के साथ मुझे यानी प्रीत को आज का शो कल्चर ऑफ पंजाब यही खत्म करने की इजाजत दें। बट फॉर एनी बिजनेस क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट देव तातला एट द नंबर 416-677-0609। With that, I sign off. Shall see you again very soon. Till then, goodbye, take care and keep smiling.

0: ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ
1: ਫੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
2: study visa express entry canadian express entry spousal file parents pr super visa nanny work permit farmer investor ya self employed di file gal ki immigration di har problem da solution lain layi community de jane pehchane ate tajrubekar immigration consultant gary wirk nu milo
3: koi case refuse ho gaya ya appeal te chala gaya hove immigration da koi vi masla hamesha yaad rakho ikko hi na ate ikko hi tha cic immigration hune hi call karo 416-456-66
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
5: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वद कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-456-3381 ते
4: नाली जेकर